0: 芒族的开片呢，开片更加早晚隐形。芒族雄脚蓝背驼学姐呢，数据难看了就脱米三顶地样一把车。团里大姐呢，相中大姐同位，我们就贴近一把当。拉看农民娘里扛个一把当，团里拉丁呢，白白就拦不住的。中山多起同位，芒也听得懂也。大地前，拉看农民娘里扛呢，没那规律类型，团里接到气味，娘里空心隐形。谈可了相中卡给讲，请俺娘娘好像写吧，用个一把车。第二，北京农村年轻人刚看给农村家，俺当你就比许那么西北来近呢。北京那区中区半关中下琼乡，拉看农民兄弟年轻们呢，南卡拉定有些的，蒙区第一个呢开的西医院比，姐姐先把该是些。
1: 那是大谈的。这两年过来，送用的他手机质量我们下下的去，人力又在他电脑端着了吧？
2: 啊，对的。
1: 他谈到这汽车钱用的，你们在的全用的也不差多吧？
2: 啊，对的。
1: 那这样手机质量没给给省拿了嘞，样子感受给省不着了吧？
2: 啊，对的。
1: 这是钱呢？
2: 他哪有个这个省拿拿钱呢？他这跟那的这钱，他你也给离开离了，他哪有个干面加不了钱用着吧？他第二有个没给钱了他。但是就像这个芒族跟多族中轻松的，我三弟兄弟，他三弟兄弟是解放中做个嘛嘞？这三弟兄弟干哪的？他他从内城乡的这个地里压力，这个下他当局的三局当局的那个干的这个都是休假，说这个芒族他从地里压力的便宜这个啥？他是那个这个三局不拿乌兰的这个芒族了，奥这里的这是让你个三弟拿了解放的他，刚从他连个出皮的，他这天王三弟的他那里个这个三弟当的了的，彭林那个他这王家那个，所以说。罗东三里乡是大的，
1: 那是。但他书记来空了松松，你们得救助点是吧？
2: 啊，你去救助。
1: 哦，你去救助，说是白想想，第一说是白说是这些救助是的钱呢，白想想那这个这个钱好多三角了，像书记上是经常给三路上当的，都是跟他说救助给等着三路好呗。
2: 那是了，但这哪路上给三路当的？
1: 那是。
2: 他哪里个这个这个门那头当这个地方搞这个嘛提着啊？搞这个。让让说说个个年，靠这个他，咱们现在都有这些。正中堂写的这些老了些的地方了，他们说跟别的个呢，门中堂写干部写晓得吗？没联系。他这些弄的，那个年纪里个他，他年纪小的个他皮够细个的呢。这三三老当当当当他，屯里个这家里人弄的，全他。你这个有一个家里个他不那么的，全他跟俺这个这屯里个一下子做这个对嘛？朝代里朝代干了，他当年三老当的时候，他就从门庭外头拉都出门去了。他上面个他也打的他，当用的这种工作，他这当用的说这个三亩场地还是掏过去了。做地家不这上面个他让亩了哇？他就做个地的门庭外那得了，那把去了嘛？俺们这个三老了哇？现在。他现要打三个，这个三老当中了，彭林哥讲的是满足个开平个些的，要打三老呢，他我从做地家子，这里满足做钱做，可是俺妈娘爹做哩个三七娃了了，单单娘爹他不接东了，完了这我哩个他不接东哩干哪去了，他都是说送的嘞，他这俺如果三老当现在个家里年了，妈的高了，他那是可怜了，
1: 那是是，他单单这要满足拿了了，单单的没那的规矩些多了。别家现在如今那个空了松松，他去老了用把子年年呢，用把个钱个的呀，从最哪里呀，爹家养过来呀，就得了八百样，干么爹呀是多？
2: 好对对对，
1: 得了样子，他肯定说的，样面那就龙珠个国学的，他国语的的国学讲了呀嘛，不要要了吧？
2: 好对对对，
1: 对对，样子的这满足那老样子三家啥的，样子的这啊，对呀，我们都是年年都要买呗。
2: 真的。कि तन नंदा करे मंदु ये माता संग ये मन्यर क्यों माजी कोने मदों तो दम सी तुम मिला से ला से दूते कर्म अधिकार से ते मा ता ठीक कम सम से ते ते ते से सन्ये योरे तंदा क्यों शोध चिरे दरों ते सुन्जी लेता तेरे सन्ये मंदो
1: ते तंदा चंजू ना लेगा चिदु चे कर्म थोमे जो रुवा
2: हो रे
1: तो शुदे चुक सोने लगा रुवे कंडे रुवे
2: न्यर क्यों चिन्ये लगा दो ता पे नंगो सु शहां तो सो लेता लोम जुग लेतें ता मुले खेप सांते ता सो कर मजारे कब्जा था कुपन्ना कब्जा थी मुझे गुन मजार कर मज जो तो तेरे
1: लास
2: चावा काही के मरेरी के निवारे कर मज निहित्ता अपनी नाम रोता था चूज़ले निहित्त सोंग्स सोंग्स में हो मा
1: ना
2: काही काही यों बाप शेर शेर के तूले सोंग्स सो देश में रोल
1: तूड़ा
2: ना तुम तो निहित्त क्यों शेर था तो जब ᱛᱚᱱᱡᱮᱱ ᱢᱚᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱢᱚᱥᱩᱜᱤᱭᱟ ᱞᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱟᱯ ᱛᱮ ᱪᱩᱵᱡᱩ ᱫᱟᱛᱤ ᱥᱚᱦᱟᱱ ᱞᱮᱢ ᱢᱟᱛᱮ ᱢᱤᱠᱥᱩᱠ ᱡᱟᱜᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱡᱮᱞᱮ ᱜᱚᱨᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱡᱚᱵᱮ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱞᱚᱛ ᱞᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱦᱤᱱᱟ ᱞᱟᱥᱤ ᱜᱨᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱥᱤᱥ
1: ᱠᱚ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱢᱮᱱ ᱜᱚᱞ ᱯᱟᱜᱩᱨ
2: ᱵᱟ ᱥᱟᱢᱮᱱ ᱜᱚ ᱯᱟᱢᱨᱚ ᱥᱟᱢᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱜᱤ ᱛᱚᱜᱡᱚ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱨᱡᱤᱛ ᱥᱚ ᱛᱚᱠᱥᱤᱥ ᱭᱟᱨᱟᱜᱟ
1: ᱥᱟᱥᱤᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱱᱫᱮ ᱥᱤ ᱵᱮ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱮᱢ ᱫᱩᱜᱫᱚ
2: ᱦᱚ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱫᱟ
1: ᱛᱤ ᱫᱩᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱩᱡᱤ ᱛᱤᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱭᱩᱥᱮ ᱪᱚᱱᱥᱚ ᱨᱟᱯᱠᱟᱱ ᱱᱩᱢᱟᱨ ᱨᱚ
2: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱮ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱭᱟ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚᱨᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱵᱮ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱠᱚᱱᱥᱚ ᱡᱤ ᱞᱟᱯᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱤᱴᱤᱨ ᱵᱟ
2: ᱭᱚᱨᱮ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱭᱚᱨᱮ
1: ᱱᱟᱥ
2: ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱮ ᱡᱟᱪᱮ ᱫᱤ ᱵᱤᱱ ᱧᱮ ᱢᱟᱭ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱯ ᱪᱷᱮ ᱛᱮᱱ ᱨᱚ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱡᱤ ᱜᱟ ᱭᱩᱝ ᱧᱮ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱮᱱ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱦᱤᱭᱟᱨᱮ ᱦᱤᱭᱟᱨᱮ ᱭᱚᱝᱨᱮ
1: ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱯᱮᱨᱮ ᱨᱚ
2: ᱦᱚ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱯᱮᱨᱮ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱭᱩᱝᱨᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱯᱮᱨᱮ ᱥᱤ ᱩᱱᱤ ᱠᱤ ᱛᱩ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱡᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱵᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱢᱮᱞ ᱠᱤ ᱯᱮᱱᱨᱮᱛ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱢᱮᱞ ᱠᱤᱱ ᱥᱩᱵᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱞᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱠᱤ ᱢᱟᱞ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱢᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱢ ᱢᱟᱞ ᱭᱩ ᱞᱤ ᱠᱤ ᱡᱟ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱤᱭᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱨ ᱧᱚᱱ ᱨᱚᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱠᱟ

0: 未来青囊。表情拿起中间的班冠宗下中香而看农民兄弟你这么呢南卡拉的有些的蒙提的第一个你看到下几年比接近三把该是学
1: 咱忙做不干的这个做不年代的地产的他年代跟工具这个车中看着这个呢听唐宝年代的yāng tāg lai tāng zōg sāma, tāng tāng bā rāng gā rāñī gā sāma, tā rāñī lī gā sāma tāg tāwa tēnā mēli tā. Tā ngā rūg tāng tāng bā kēpīng tōp tāp shī tāni, ñam dēp tā tō mā tsōg gā tā tāng tā yā pō tsuk dō mā tā. Tā tsuk pēnā rāng gā lō tōng rōng shī, rāñī gā tsuk chē chē hiyo nā, tā rāñī gā tsī tēn rō yu mā gā, shē tāng shī nā mā tsōg lā तो रांग करी तो अलग क्या क्या चीज़ है ना तो तेरी तो कैबिन तो तो ना तो चांबो यानी क्या बात है तो उन्हीं मावा ना तो तो चीज़ तो तो पन्ना न्याम दे ब्रिंगे माँ दा तो ये ना न्याम दे ड्रीम लोग ड्रीम ना तो माँ बोली तो ते ड्रीम लोग ड्रीम ना तो ना न्याम दे माँ ना तें तां बात है चांदू गोंटी तो सम नो ना तरह जों तां वो ना में ना तो चांदे के सम नो
2: लक्षण सम
1: वो लक्षण सम मत तो मांसो के ची दली आ सम सम मांसो सब केवी तो ना रानी कांगे से चेन ना सो टेबलेट ची आ सम नी का सम नो रो या तो ना तो दी तो तो पेन ना मांसो के ईसी तो जीरो तो तरंग करता है ना ये मेग मरी चांयो मियों बा गोन मत दंगिया चाहते तो लिता तरंग करता है नीटर ना तो ना सोंग दियो रे मरी चांयो मियों तो चोंबा का ही के तो चे क्यों तो चौ यह लाता ले मैं क्या इंदक निर्क्यों ची देर की उन जंगलों के बाद तेरे तो पाकर मात्र पाती दूरी कुआं को काली क्या गलत होती है उन्हों यहाँ कोला पार कर मात्र दी तो मुंते पैना पेंडे कोला पेंडे तो तो यहाँ माजी छह पैसे ने क्या बियाने तो
2: यहाँ
1: ले पांच जो यहाँ सांसों से गले उन्हों स बेसों कहाँ होगी यहाँ तक जी मत तालों में चुप दूसरा तक सों देर ताज़े देर सों देर ताई ना ठीक ना तरह से काली ठीक मानियों लम न्यंका ठीक मानियों लम ये ना न्यंका तम ची तक चेंडे ची उन सोच ता कहाँ तो करना लोजू ले चल लोजू जो तो जो जी माँ उसको न्यंका की ना ताबारों ठीक ना तरह का तक द तारुं का पढ़ देता लिख देते हैं मासूम ही सो ताले ने चेहरे देता तें मासूम बाते ताले तें मासूम बाती के नाम तराल बेद तालो चुप दिखे ना ले दे लिखे लाओ दिखे नेतों के रेमल पर तोर सर्वे के दुगिरों ता माँ से तो तातार दो जिरों बेद इनको भी आलोक ना ये ना यहाँ तीन नाम तरा काशी नॉर्ड देश क्यों चारी लाना ता जी मैं गुलो जानी भाई कम बैंड था मिक्सी के गान कॉम्बिंग चेंबो के ता नौकरी न्याम्यर के लिए का ये ले जोग ता तो निंतो मान्याम के गान लिता या तो या तो उन्हीं के ता नौकरी ले का तंदरुस्त चाहिए ता देखो
2: ना सोच रही ना सोच रही ला
0: सिंगर जो बताऊं बा तीन दिन लेचिन जे दो चार दिन चार दिन नहीं जुड़े जी लेचिन दिन संग दांग जोंग जी की चेरिंग डंडर दांग निंजन हिंग की लोजंग हिरब शेशे चिंगु नंग की जांसु पिंसो ला जी जी ता चुमा चेरिंग
3: जो लुंचिंग निंचिंग लेको तंगे लुंचिंग जे सीबी लाई चीबे लेंचिंग सीबी लाई
4: मांजू लेंचिंग
5: शान आ लोचों जो बो जो मंचो ये ही गुबे डेंजर सीज़ा का जेडा बुजुर्ग कंगा डेंजर सीज़ा का जेडा जे सीगुम वो ला लोचों जो बो जो मंचो ये ही गुबे डेंजर सीज़ा का जेंग मुझे